0: समय को साथ में जितू सुनचांदी पसल
1: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
0: विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
2: नमस्ते म हो तपाईहरुका आफ्नै गायक तिलक बमल्ला तपाई यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ चांगर जिल्लाको पहिलो आवाज आदि खोलाको स्पन्दन सामुदायिक रेडियो आदि खोला 105.4
3: समिति हो चौदह क्या में बोधे लोटी पर दी रो बैंक ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो खाई खाई बहु
4: कोई लोटरी भर दिलवा
5: आगे समझ जो लोटरी पर दी हूँ छापता ही गुरी
4: भर दी आ भर दी बल लोटरी खाली पर दिन बा सहेली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बनी खाई बिसा खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
6: सतर्क
5: सिद्धार्थ ब्यागर क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
7: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
8: हार्दिक निमन्त्रणा
9: भगवान श्री हरि तथा समस्त पितृहरूको आशीर्वाद स्वरूप मिति 2026 साल कार्तिक 23 गते कोलोकवासी मुर मर्दन बगाले ढाडे बगालेको सत संकल्पमा विक्रम सम्बत 1994 साल श्री पञ्चमीमा स्थापित श्री गणेश लक्ष्मी नारायण मन्दिरलाई पुननिर्माण गरी समय सापेक्ष युगानुकूल भव्य र दिव्य प्रभु निवास निर्माण गरी प्राण प्रतिष्ठा गरी भगवानको विग्रहहरूलाई स्थापित गर्ने वैदिक अनुष्ठानमा यहाँ र यहाँको सपरिवार उपस्थित भई भगवत सेवा एवं प्रसाद ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
8: कार्यक्रमहरू
9: यही असार 5 गते शुक्रबार पूर्वाङ्ग तयारी,
8: असार 6 गते शनिबार पूजन प्रारम्भ एवं अधिवास,
9: असार 7 गते आइतबार जप पाठ एवं अधिवास,
8: असार 8 गते सोमबार विशेष रथ यात्रा नगर परिक्रमा एवं प्राण प्रतिष्ठा साथै भण्डारा प्रसाद वितरण भगवान दर्शन,
9: असार 8 गते सोमबार बिहान 9 बजे रथ यात्रा दिउँसो 12 बजे पट खुल्ला भगवान दर्शन को लागि भण्डारा खुल्ला गरिनेछ।
8: भगवानको नौ अधिवासहरू 6, 7 र 8 मा हुने हुँदा सेवामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ।
9: नोट, आजीवन वैष्ठिक ब्रह्मचारी महादेव पुत्र कुमारजीको जन्म विशेष रथ यात्रा महामहोत्सव सम्पन्न हुनेछ।
8: संकल्पकर्ता तथा आयोजक समस्त बगाले परिवार वालिङ 8 बगाले टोल,
9: मोबाइल नम्बर 98560 27966, 98560 40126 र 98460 81136।

0: समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
1: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
0: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
2: रेडियो आदि खोला एक सौ
0: समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
1: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
0: विश्वासिलो भर पर्दो

हजुर, कार्यक्रम को क्रम में राखी यह स्थित अंतिम व्यापारिक विश्राम संगे फिलहाल स्वागत करते कार्यक्रम का बिजली का भाग में आज हम कार्यक्रम का बिजली का भाग को इस बसाई में रहकर रह, सुमधुर खाल का नया भाका कार्यक्रम में स्थान दी अगाड़ी बढ़ी रहता थे। अब भी हम कार्यक्रम को अंतिम अंतिम समय में आईपुग अन्य श्रृंखला में विशुद्ध नेपाली लोकगीत भाकासंगे सहयात्रा करने विश्वास दिलाऊ जाते यहां मज सुमधुर खाल को भाका पृष्ठभूमि में बजी भाका छोड़ आज के सुन्दर व्यवसाय मन विदा हु ज्ञान सूचना और मनोरंजन का सुंदर गुणा रेडियो आदि खोला यहां बाकी पल शुभ रहोस् मंगल रहोस् नमस्ते जय गीत जय संगीत।

0: रेडियो अधिकुला 105.4
1: समिचो 14 केमे बोदे लोटी पर्दिरो बैंगे ने विवरण पी बिजे मुई खातरी खै हमरो
2: खै खै बहु कोई लोटी पर्दिलवा
3: आंगी समिचो लोटी पर्दिउ छाउताई गुदी
2: बर्दी आ बर्दी बा लोटी खले पर्दिम बा सैली मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खनै बनी खै बिसा खै मै विश्वास आलन फोनै खले पनि आफै विवरण खै मै आपिन खबै बनी वित्तीय संस्थाई के पासवर्ड पिन खै मै आरी सुमी बैंक आफै बनी आरी
4: सतर्क त न ठगि देख्या पर्दैन
5: सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्यारे जनहितरी जारी सन्देश
6: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
7: आहा कस्तो ब्रान्डिङ अनि टिकाउ होला जस्तो छ है जुत्ता त गजब लाग्यो
8: हो र मैले नि राम्रो लागेर गोल्ड स्टारको अथराइज सोरुम आरती उज्जवल सुज हाउस वाली नयाँ बजारबाट जुत्ता अनि चप्पल किनेर ल्याए
7: मलाई नि चाहिएको थियो आजै त्यही जान्छु
8: गोल्ड स्टार को आधिकारिक शोरूम अथोराइज शोरूम आरती उज्जवल सुज हाउस वालिङ आठ नया बजार चोकैमा गोल्ड स्टार कंपनी का पार्टी सुज स्कूल तथा अफिशियल सुज स्पोर्ट्स सुज लेडीज जेन्स सुज तथा जुत्ता चप्पल को होलसेल एवं खुद्रा बिक्री गरिन्छ
7: गोल्ड स्टार को अथोराइज शोरूम आरती उज्जवल सुज हाउस वालिङ आठ नया बजार चोक प्रोप्राइटर बोध्र किनेर ल्याए मलाई नि चाहिएको थियो आजै त्यही जान्छु
8: गोल्ड स्टार को आधिकारिक शोरूम अथोराइज शोरूम आरती उज्जवल सुज हाउस वालिङ आठ नया बजार चोकैमा गोल्ड स्टार कंपनी का पार्टी

एसएस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सेंजा

0: नहीं, आइए हम लोग आने में 10 बजे के छा
1: ए समय को साथ मा जितू सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो मा कुना को साइड मा विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री गर्ने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है।